0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइबर नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बसा वैटिकन सिटी ना

विभाग पर चर्चा करेंगे। जब कई लोग दीवारें खड़ी कर रहे हों, विचारधाराओं की दीवारें, तो यह पुल बनाने, जब बहुत सारे लोग फूट डाल रहे हों तो मेल जोल बढ़ाने, और जब कई लोग उदासीनता पसंद कर रहे हों तो यह हमारे समय की दुखद घटनाओं में खुद को शामिल होने देने का बुलावा है। इन्हीं शब्दों के साथ पोप फ्रांसिस ने 31 अक्टूबर 2024 को वैटिकन संचार विभाग के साथ अपनी अंतिम मुलाकात में इसके मिशन की याद दिलाई थी। पोप लियो 14वें ने अपने चुनाव के बाद संचार विभाग के सदस्यों के साथ अपनी पहली मुलाकात में उनसे एक अलग तरह के संचार को अपनाने की सलाह दी, एक ऐसा संचार जो किसी भी कीमत पर आम सहमति नहीं चाहता, खुद को गुस्सैले शब्दों में नहीं छिपाता, जटिलता के मॉडल को नहीं अपनाता और सच की खोज को उस प्यार से अलग नहीं करता जिसके साथ हमें विनम्रता से उसे खोजना चाहिए। 19 जून को वैटिकन रेडियो के संत मरिया दी गैलेरिया ब्रॉडकास्टिंग सेंटर का दौरा करते हुए पोप लियो ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपने मिशनरी कार्य के दौरान वैटिकन रेडियो के शॉर्टवेव प्रसारण को याद किया। उन्होंने बातचीत के मिशनरी महत्व को भी दोहराया। यही वह नींव है जिस पर वैटिकन संचार काम करती है। वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट हैं मिस्टर पाओलो रूफिनी और सचिव मोनसिनियर लूचो रूइस। अगर हम संचार विभाग के इतिहास की बात करें तो विभाग की स्थापना पोप फ्रांसिस ने 27 जून 2015 को मोतू प्रोप्रियो वर्तमान संचार संदर्भ के साथ की थी, जिसका नाम पहले संचार का सचिवालय था। संचार के सचिवालय को वैटिकन संचार प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का काम सौंपा गया था, जिसने संचार के सभी संस्थानों को एक साथ लाया। इस बृहद परिवार में सामाजिक संचार के लिए परमधम पीठ्य समिति, वैटिकन प्रेस कार्यालय, वैटिकन प्रिंटिंग हाउस, फोटोग्राफिक सेवा, लॉ साल्वातोरे रोमानो, वैटिकन पब्लिशिंग हाउस, वैटिकन रेडियो, वैटिकन टेलीविजन सेंटर और वैटिकन इंटरनेट सेवा को एक साथ रखा गया है। लेकिन पहले ये अलग अलग चल रही थी। 9 संस्थानों को एक ही संपादक के और प्रबंधन के अंदर लाना सहज काम नहीं था, जिनका अपना इतिहास और अपनी परंपराएं थीं। इन संस्थानों में सबसे पुराना वैटिकन प्रिंटिंग हाउस है, जिसे पोप सिक्स्तुस पांचवें ने 27 अप्रैल 1587 को वैटिकन प्रिंटिंग हाउस के नाम से शुरू किया था। वैटिकन समाचार पत्र लो साल्वातोरे रोमानो पहली बार 1 जुलाई 1861 को प्रकाशित हुआ था। लिब्रेरिया एडिट्रिचे वतिकाना, जो वैटिकन का आधिकारिक प्रकाशन केंद्र है, 1926 में शुरू हुआ। वैटिकन रेडियो की शुरुआत 12 फरवरी 1931 को पोप पियूस 11वें ने वैटिकन सिटी के प्रसारक के रूप में की थी। इस सुधार से पत्रकारिता में क्रांति आ गई है, जो दिसंबर 2017 से सक्रिय वैटिकन न्यूज वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जानकारी और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी मौजूदगी से स्पष्ट है। 1939 में वैटिकन प्रेस ऑफिस बनाया गया, जो पोप और परमधम पीठ की अलग अलग गतिविधियों से जुड़ी सभी खबरें एवं आधिकारिक खबर फैलाने के लिए उत्तरदायी था। शुरू में यह लो साल्वातोरे रोमानो का एक छोटा ऑफिस था, जिसका मकसद सीधे पत्रकारों तक खबरें पहुंचाना था, लेकिन द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान यह एक विशेष प्रेस ऑफिस बनने के साथ स्वतंत्र हो गया। वैटिकन टेलीविजन सेंटर की स्थापना 1983 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के आदेश पर हुई। संचार विभाग के अंदर इसकी स्थापना के साथ वैटिकन टेलीविजन सेंटर के प्रोडक्शन को वैटिकन मीडिया का लेबल दिया गया और अंत में 25 दिसंबर 1995 को वैटिकन इंटरनेट सेवा का जन्म हुआ, जिसमें संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के क्रिसमस संदेश को उस समय बनी नई वेबसाइट www.vatican.va पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। जैसा कि प्रेरितिक संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, संचार विभाग परमधम पीठ की पूरी संचार प्रणाली के लिए जिम्मेदार है और वैटिकन के सभी संचार गतिविधियों को एक साथ लाती है, ताकि पूरी प्रणाली कलीसिया के सुसमाचार प्रचार मिशन की जरूरतों के हिसाब से काम करे। ऐसा करने के लिए यह उत्पादन मॉडल तकनीकी नवाचारों और संचार के मौजूदा तकनीकों एवं भविष्य में विकसित होने वाले तरीकों का इस्तेमाल करता है।
अपने तय कामों के अलावा या कलीसिया के संचार गतिविधियों के ईशा

दूसरे एवं प्रेरितिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। यह विश्वासों को इस जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करता है कि हम में से हर एक जन यह सुनिश्चित करें कि सभ्यता और नैतिकता को आगे बढ़ाने की सेवा में कलीसिया के प्रेरित मिशन के लिए बातचीत के कई तरीके मौजूद हों। यह वैटिकन राज्य सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है और रोमन कोरिया के दूसरे संस्थानों एवं परमधम पीठ तथा वैटिकन सिटी के गवर्नरेट से जुड़े कार्यालयों तथा संस्थानों को उनके संचार की कोशिशों में सहयोग करता है। श्रोताओं, रवि फारे कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका प्यारी भाभी। लेखक है सिद्धार्थ खान चंदानी। श्रोताओ, सभी कहते हैं कि लड़कों और लड़कियों की परवरिश में माँ बाप को एक सा बर्ताव करना चाहिए, पर देखा जाता है कि लड़कों को मनचाहा घूमने फिरने पढ़ने लिखने की छूट मिलती है। लड़कियों को स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई करके सीधे घर वापस आने को कहा जाता है। माता पिताओं को समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पड़ोसियों के ताने सुनने से बचने के लिए अपनी बच्चियों पर बहुत सारी बंदिशें लगानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लड़कियां चुपचाप माता पिता का कहा मान लेती हैं। उनकी पहचान, आत्मविश्वास और प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। पर कुछ लड़कियां अपने प्रति समाज और परिवार के सदस्यों की गलती मानसिकता और अनावश्यक बंदिश का विरोध करती हैं। पर उनके विरोध के लिए भी सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, अन्यथा इस विरोध का गलत अंजाम हो सकता है। प्रस्तुत नाटिका में प्राची को अपनी भाभी रश्मि का मार्गदर्शन मिला। रश्मि अपनी सूझबूझ से परिवार की दूषित मानसिकता को दूर करने में सफल हो पाई और प्राची का मनोबल बढ़ाया। तो आइए सुनते हैं सिद्धार्थ खान चंदानी की लिखी नाटिका प्यारी भाभी।
1: बाय मोनल, सुन कल जल्दी आना। ओके, बाय बाय।
2: बाय प्राची। आ गई इतनी देर से, मम्मी नाराज हो रही हैं। जा पहले उनसे जाकर मिल ले।
1: ओफो भाभी, आपको भी मेरी चौकसी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या?
2: अरे बाबा, तुम्हें डांट से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अब जल्दी से चली जाओ।
1: अच्छा ठीक है। भाभी खाना बन गया है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है।
2: तुम मम्मी से मिलकर आओ पहले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
3: अरे रश्मि, कहाँ हो भाई?
2: ओहो क्या हुआ, अभी 2 मिनट पहले ही तो कमरे से आई हूँ, अब क्या चाहिए आपको?
3: अरे भाई बैठो मेरे पास, क्या दिन भर।
2: 2 मिनट में आती हूँ ना, प्राची को खाना दे दूँ बस।
3: क्या प्राची आ गई? 8 बज रहा है, अरे जरा उसको बुलाना, ये कोई टाइम है घर आने का?
2: जाने भी दीजिए ना, अभी तो आई है बेचारी, मम्मी अलग डांट रही होगी उसे।
3: रश्मि तुम उसकी तरफदारी इतना मत किया करो, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है।
2: ओहो अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसके कॉलेज के सभी दोस्तों को जानती हूँ, मैं बात करूंगी उससे, ठीक है?
1: भाभी, भाभी, कहाँ हो? भाभी।
2: हाँ आई।
4: प्राची मोबाइल रखो और ठीक से खाना खाओ।
1: पापा ठीक से ही खा रही हूँ, बस 1 मिनट।
4: ये क्या बदतमीजी है, हर वक्त फोन हाथ में तुम्हारे, और आने जाने का आजकल ये क्या समय हो गया है, क्या करती रहती हो आजकल?
1: पापा वो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाले हैं ना, हम लोग एक नाटक करने वाले हैं और उसकी रिहर्सल के कारण शाम को थोड़ा लेट हो जाती हूँ बस, और क्या।
4: नाटक? तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या ये सब करने? तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई पर सालाना कितना खर्चा होता है?
2: पापा जी एनुअल फंक्शन के दौरान पढ़ाई थोड़ी कम होती है, और अपनी प्राची तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, पिछले सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर लाई थी अपनी प्राची।
4: रश्मि बेटा तुम इसकी हर बात में सपोर्ट मत करो, अरे अपने भविष्य की कुछ चिंता है इसे?
1: अरे पापा इसमें भविष्य वाली क्या बात है भाई, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी।
3: चुप रहे प्राची, सही तो कह रहे हैं पापा, बिल्कुल आवारा होती जा रही है।
2: नहीं नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं जी।
3: अरे तुम बीच में मत बोलो जी।
1: भैया मैं आपको आवारा लगती हूँ?
4: बिल्कुल हो गई हो, और बड़े भाई से किस सुर में बात कर रही हो, नाम डुबोगी हमारा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। जरा अपने भाई को देखो, सरकारी ऑफिसर है, और अपनी भाभी से कुछ सीखो, टॉपर थी कॉलेज की, और तुम?
1: पापा आखिर मैंने किया क्या है?
2: प्राची अब खाना तो खा ले। प्राची
3: अरे मत जाओ इसके पीछे, जाने दो उसको।
2: प्राची प्राची दरवाजा खोलो प्राची। मम्मी पापा अरे सुनिए ना, ये प्राची दरवाजा नहीं खोल रही, प्राची दरवाजा खोलो।
3: प्राची दरवाजा खोलो, प्राची।
2: प्राची देखो ऐसा नहीं करते बेटा, गलत बात है, दरवाजा खोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, प्राची दरवाजा खोलो।
3: पापा मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ।
4: हाँ ठीक है जल्दी करो।
1: इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ बस। क्या इसकी इजाजत है मुझे, या ये भी नहीं कर सकती मैं इस घर में?
2: प्राची तुम दरवाजा खोल दो, हम सब चले जाएंगे।
3: रश्मि, प्राची कहाँ है?
2: अपने कमरे में है, गुमसुम हो गई है। आप लोग भी ना उस पर अकारण सख्ती करते हैं।
3: अकारण? आजकल का जमाना देख रही हो तुम?
2: अरे हमें जमाने से क्या लेना देना, अपनी बहन को देखना जरूरी है। कितनी उदास है वो, कल से कॉलेज भी नहीं गई। अरे फंक्शन में हिस्सा लेने में आखिर बुराई क्या है? देखिए आप भी तो अपने समय में गाना गाया करते थे ना।
3: अरे भाई मेरी बात कुछ और थी।
2: और उसकी बात और है ना। अरे उसकी बात अलग क्यों है? क्योंकि वो एक लड़की है। कल को हमारा बच्चा अगर बेटी हुई तो क्या आप उसके साथ भी यही करेंगे?
3: ओफो, कुछ का कुछ मत जोड़ो रश्मि। मुझे मेरी बहन की फिक्र होती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके साथ कुछ बुरा होने की बात सोचकर भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
2: उसे रुला रुला कर ये प्यार जताने का भला कौन सा तरीका है? देखिए शादी ब्याह हो जाएगा तब तो बेचारी दूसरों की मर्जी की मोहताज हो ही जाएगी, पर अभी तो उसको उसके हिस्से की खुशियां दे दो, उसकी मर्जी से जीने दो।
3: मगर कुछ?
2: अरे क्या कुछ, वो कुछ गलत नहीं करेगी, मैं इस बात का वादा करती हूँ जी। आप ना प्लीज उससे बात कीजिए।
3: चलो अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ।
2: प्राची क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी, अपनी भाभी से बात नहीं करोगी?
1: नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: नाराज हो?
1: नहीं बस उदास हूँ, ये सोचकर कि मेरे अपने ही मम्मी पापा, मेरा अपना ही भाई मुझ पर विश्वास नहीं करते।
2: अरे ऐसा क्यों सोचते हो?
1: सोचना पड़ेगा ना भाभी, मेरे अपने ही मुझ पर विश्वास नहीं करते। भाभी आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? सिर्फ एक नाटक में पार्टिसिपेट ही तो किया है।
2: नहीं प्राची, तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए तुम्हारी चिंता करते हैं।
1: नहीं नहीं भाभी, भैया और पापा मुझे समझते ही नहीं, और मम्मी उनका तो साथ देती है मजे से। मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करती हूँ भाभी, ये तो आप जानती हैं ना, मैंने कभी खराब नंबर स्कोर किया क्या? मगर पढ़ने के अलावा भी कुछ इच्छाएं होती हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है भाभी। हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, कुछ है, मगर ये लोग मुझे समझते ही नहीं।
2: प्राची ऐसा नहीं है।
1: ऐसा ही है भाभी, ये भी कोई जीना है। बताइए, गुलामों की तरह हाँ? इससे तो काश मैं होती ही नहीं। मम्मी पापा तो बस अपने बेटे के साथ ही खुश हैं। वो मुझे लाए क्यों भाभी, मुझे मर जाना चाहिए।
4: प्राची पागल बच्ची, ये क्या कह रही हो? तुझे किसने कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? बेटा माँ बाप की फिक्र को तुम नहीं समझोगे, हमें तुमसे बहुत प्यार है बेटा।
3: अरे मेरी बहना रानी, तू तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी है। तेरा भैया जो है ना, तुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा बाबा ले, कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, अब तो हंस दे।
2: ले, मैंने भी कान पकड़े, अब हंस दे। और सुन, जल्दी से तैयार हो कॉलेज जाने के लिए, रिहर्सल पे नहीं जाना क्या?
1: सच? जाना है भाभी, क्यों नहीं, मेरी प्यारी भाभी।
0: प्यारी भाभी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे किंशुक चौहान, सुधीर तेलंग, समता भोरेकर और दुर्गेश नंदनी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइबर नदी के किनारे एक छोटी पहाड़ी पर बसा वैटिकन सिटी न केवल दुनिया का सबसे छोटा देश होने के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अंदर ख्रिस्ती धर्म के 2000 से अधिक वर्षों पुराने इतिहास संजो कर रखा है, जो ख्रिस्तियों सहित उन सभी लोगों को आकर्षित करता है जो कला, संस्कृति और शांति प्रिय हैं। यहाँ सालों भर तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वैटिकन में कई विभाग हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वैटिकन के संचार विभाग पर चर्चा करेंगे। जब कई लोग दीवारें खड़ी कर रहे हों, विचारधाराओं की दीवारें, तो यह पुल बनाने, जब बहुत सारे लोग फूट डाल रहे हों तो मेल जोल बढ़ाने, और जब कई लोग उदासीनता पसंद कर रहे हों तो यह हमारे समय की दुखद घटनाओं में खुद को शामिल होने देने का बुलावा है। इन्हीं शब्दों के साथ पोप फ्रांसिस ने 31 अक्टूबर 2024 को वैटिकन संचार विभाग के साथ अपनी अंतिम मुलाकात में इसके मिशन की याद दिलाई थी। पोप लियो 14वें ने अपने चुनाव के बाद संचार विभाग के सदस्यों के साथ अपनी पहली मुलाकात में उनसे एक अलग तरह के संचार को अपनाने की सलाह दी, एक ऐसा संचार जो किसी भी कीमत पर आम सहमति नहीं चाहता, खुद को गुस्सैले शब्दों में नहीं छिपाता, जटिलता के मॉडल को नहीं अपनाता और सच की खोज को उस प्यार से अलग नहीं करता जिसके साथ हमें विनम्रता से उसे खोजना चाहिए। 19 जून को वैटिकन रेडियो के संत मरिया दी गैलेरिया ब्रॉडकास्टिंग सेंटर का दौरा करते हुए पोप लियो ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में अपने मिशनरी कार्य के दौरान वैटिकन रेडियो के शॉर्टवेव प्रसारण को याद किया। उन्होंने बातचीत के मिशनरी महत्व को भी दोहराया। यही वह नींव है जिस पर वैटिकन संचार काम करती है। वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट हैं मिस्टर पाओलो रूफिनी और सचिव मोनसिनियर लूचो रूइस। अगर हम संचार विभाग के इतिहास की बात करें तो विभाग की स्थापना पोप फ्रांसिस ने 27 जून 2015 को मोतु प्रोप्रियो वर्तमान संचार संदर्भ के साथ की थी, जिसका नाम पहले संचार का सचिवालय था। संचार के सचिवालय को वैटिकन संचार प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का काम सौंपा गया था, जिसने संचार के सभी संस्थानों को एक साथ लाया। इस बृहद परिवार में सामाजिक संचार के लिए परमधम पीठ समिति, वैटिकन प्रेस कार्यालय, वैटिकन प्रिंटिंग हाउस, फोटोग्राफिक सेवा, लॉस अल्बातोरे रोमानो, वैटिकन पब्लिशिंग हाउस, वैटिकन रेडियो, वैटिकन टेलीविजन सेंटर और वैटिकन इंटरनेट सेवा को एक साथ रखा गया है। लेकिन पहले ये अलग अलग चल रही थी। 9 संस्थानों को एक ही संपादक के और प्रबंधन के अंदर लाना सहज काम नहीं था, जिनका अपना इतिहास और अपनी परंपराएं थीं। इन संस्थानों में सबसे पुराना वैटिकन प्रिंटिंग हाउस है, जिसे पोप सिक्स्तुस पांचवें ने 27 अप्रैल 1587 को वैटिकन प्रिंटिंग हाउस के नाम से शुरू किया था। वैटिकन समाचार पत्र लॉस अल्बातोरे रोमानो पहली बार 1 जुलाई 1861 को प्रकाशित हुआ था। लिब्रेरिया एडिट्रिचे वतिकाना, जो वैटिकन का आधिकारिक प्रकाशन केंद्र है, 1926 में शुरू हुआ। वैटिकन रेडियो की शुरुआत 12 फरवरी 1931 को पोप पियूस 11वें ने वैटिकन सिटी के प्रसारक के रूप में की थी। इस सुधार से पत्रकारिता में क्रांति आ गई है, जो दिसंबर 2017 से सक्रिय वैटिकन न्यूज वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन जानकारी और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी मौजूदगी से स्पष्ट है। 1939 में वैटिकन प्रेस ऑफिस बनाया गया, जो पोप और परमधम पीठ की अलग अलग गतिविधियों से जुड़ी सभी खबरें एवं आधिकारिक खबर फैलाने के लिए उत्तरदायी था। शुरू में यह लो सल्वातोरे रोमानो का एक छोटा ऑफिस था, जिसका मकसद सीधे पत्रकारों तक खबरें पहुंचाना था, लेकिन द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान यह एक विशेष प्रेस ऑफिस बनने के साथ स्वतंत्र हो गया। वैटिकन टेलीविजन सेंटर की स्थापना 1983 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के आदेश पर हुई। संचार विभाग के अंदर इसकी स्थापना के साथ वैटिकन टेलीविजन सेंटर के प्रोडक्शन को वैटिकन मीडिया का लेबल दिया गया और अंत में 25 दिसंबर 1995 को वैटिकन इंटरनेट सेवा का जन्म हुआ, जिसमें संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के क्रिसमस संदेश को उस समय बनी नई वेबसाइट www.vatican.va पर ऑनलाइन प्रकाशित किया गया। जैसा कि प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवेंजेलियम में कहा गया है, संचार विभाग परमधम पीठ की पूरी संचार प्रणाली के लिए जिम्मेदार है और वैटिकन के सभी संचार गतिविधियों को एक साथ लाती है, ताकि पूरी प्रणाली कलीसिया के सुसमाचार प्रचार मिशन की जरूरतों के हिसाब से काम करे। ऐसा करने के लिए यह उत्पादन मॉडल तकनीकी नवाचारों और संचार के मौजूदा तकनीकों एवं भविष्य में विकसित होने वाले तरीकों का इस्तेमाल करता है। अपने तय कामों के अलावा यह कलीसिया के संचार गतिविधियों के ई शास्त्रीय एवं प्रेरितिक पहलुओं पर भी ध्यान देता है। यह विश्वासों को इस जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करता है कि हम में से हर एक जन यह सुनिश्चित करें कि सभ्यता और नैतिकता को आगे बढ़ाने की सेवा में कलीसिया के प्रेरितिक मिशन के लिए बातचीत के कई तरीके मौजूद हों। यह वैटिकन राज्य सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है और रोमन कोरिया के दूसरे संस्थानों एवं परमधम पीठ तथा वैटिकन सिटी के गवर्नरेट से जुड़े कार्यालयों तथा संस्थानों को उनके संचार की कोशिशों में सहयोग करता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संचार विभाग के बारे सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका प्यारी भाभी। लेखक है सिद्धार्थ खान चंदानी। श्रोताओ, सभी कहते हैं कि लड़कों और लड़कियों की परवरिश में माँ बाप को एक सा बर्ताव करना चाहिए, पर देखा जाता है कि लड़कों को मनचाहा घूमने फिरने पढ़ने लिखने की छूट मिलती है। लड़कियों को स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई करके सीधे घर वापस आने को कहा जाता है। माता पिताओं को समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पड़ोसियों के ताने सुनने से बचने के लिए अपनी बच्चियों पर बहुत सारी बंदिशें लगानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लड़कियां चुपचाप माता पिता का कहा मान लेती हैं। उनकी पहचान, आत्मविश्वास और प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। पर कुछ लड़कियां अपने प्रति समाज और परिवार के सदस्यों की गलती मानसिकता और अनावश्यक बंदिश का विरोध करती हैं। पर उनके विरोध के लिए भी सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, अन्यथा इस विरोध का गलत अंजाम हो सकता है। प्रस्तुत नाटिका में प्राची को अपनी भाभी रश्मि का मार्गदर्शन मिला। रश्मि अपनी सूझबूझ से परिवार की दूषित मानसिकता को दूर करने में सफल हो पाई और प्राची का मनोबल बढ़ाया। तो आइए सुनते हैं सिद्धार्थ खान चंदानी की लिखी नाटिका प्यारी भाभी।
1: सुनकर जल्दी आना, ओके? बाय बाय।
2: बाय।
3: प्राची आ गई इतनी देर से? मम्मी नाराज हो रही हैं। जा पहले उनसे जाकर मिल ले।
1: ओफो भाभी, आपको भी मेरी चौकसी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या?
3: अरे बाबा, तुम्हें डांट से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अब जल्दी से चली जाओ।
1: अच्छा ठीक है। भाभी खाना बन गया है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है।
3: तुम मम्मी से मिलकर आओ पहले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
4: अरे रश्मि, कहाँ हो भाई?
3: ओहो क्या हुआ, अभी 2 मिनट पहले ही तो कमरे से आई हूँ, अब क्या चाहिए आपको?
4: अरे भाई बैठो मेरे पास, क्या दिन भर।
3: 2 मिनट में आती हूँ ना, प्राची को खाना दे दूँ बस।
4: क्या प्राची आ गई? 8 बज रहा है, अरे जरा उसको बुलाना, ये कोई टाइम है घर आने का?
3: जाने भी दीजिए ना, अभी तो आई है बेचारी, मम्मी अलग डांट रही होगी उसे।
4: रश्मि तुम उसकी तरफदारी इतना मत किया करो, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है।
3: ओहो अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसके कॉलेज के सभी दोस्तों को जानती हूँ, मैं बात करूंगी उससे, ठीक है?
1: भाभी भाभी कहाँ हो? भाभी।
3: हाँ आई।
5: प्राची मोबाइल रखो और ठीक से खाना खाओ।
1: पापा ठीक से ही खा रही हूँ, बस 1 मिनट।
5: ये क्या बदतमीजी है, हर वक्त फोन हाथ में तुम्हारे, और आने जाने का आजकल ये क्या समय हो गया है, क्या करती रहती हो आजकल?
1: पापा वो कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाले हैं ना, हम लोग एक नाटक करने वाले हैं और उसकी रिहर्सल के कारण शाम को थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बस और क्या।
5: नाटक? तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या ये सब करने? तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई पर सालाना कितना खर्चा होता है?
3: पापा जी एनुअल फंक्शन के दौरान पढ़ाई थोड़ी कम होती है, और अपनी प्राची तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, पिछले सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर लाई थी अपनी प्राची।
5: रश्मि बेटा तुम इसकी हर बात में सपोर्ट मत करो, अरे अपने भविष्य की कुछ चिंता है इसे?
1: अरे पापा इसमें भविष्य वाली क्या बात है भाई, हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी।
4: चुप रहे प्राची, सही तो कह रहे हैं पापा, बिल्कुल आवारा होती जा रही है।
3: नहीं नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं जी।
4: अरे तुम बीच में मत बोलो जी।
1: भैया मैं आपको आवारा लगती हूँ?
5: बिल्कुल हो गई हो, और बड़े भाई से किस सुर में बात कर रही हो, नाम डुबोगी हमारा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। जरा अपने भाई को देखो, सरकारी ऑफिसर है, और अपनी भाभी से कुछ सीखो, टॉपर थी कॉलेज की, और तुम?
1: पापा आखिर मैंने किया क्या है?
3: प्राची अब खाना तो खा ले। प्राची
4: अरे मत जाओ इसके पीछे, जाने दो उसको।
3: प्राची प्राची दरवाजा खोलो प्राची। मम्मी पापा अरे सुनिए ना, ये प्राची दरवाजा नहीं खोल रही, प्राची दरवाजा खोलो।
4: प्राची दरवाजा खोलो, प्राची।
3: प्राची देखो ऐसा नहीं करते बेटा, गलत बात है, दरवाजा खोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, प्राची दरवाजा खोलो।
4: पापा मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ।
5: हाँ ठीक है जल्दी करो।
1: इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ बस। क्या इसकी इजाजत है मुझे या ये भी नहीं कर सकती?

0: थे ना।
1: भाई मेरी बात कुछ और थी।
0: और उसकी बात और है ना। अरे उसकी बात अलग क्यों है? क्योंकि वो एक लड़की है। कल को हमारा बच्चा अगर बेटी हुई तो क्या आप उसके साथ भी यही करेंगे?
1: ओफो, कुछ का कुछ मत जोड़ो रश्मि, मुझे मेरी बहन की फिक्र होती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसके साथ कुछ बुरा होने की बात सोचकर भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है।
0: उसे रुला रुला कर ये प्यार जताने का भला कौन सा तरीका है? देखिए, शादी ब्याह हो जाएगा तब तो बेचारी दूसरों की मर्जी की मोहताज हो ही जाएगी, पर अभी तो उसको उसके हिस्से की खुशियां दे दो, उसकी मर्जी से जीने दो।
1: मगर कुछ
0: अरे क्या कुछ, वो कुछ गलत नहीं करेगी, मैं इस बात का वादा करती हूँ जी। आप ना प्लीज उससे बात कीजिए।
1: चलो, अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ।
0: प्राची, क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी? अपनी भाभी से बात नहीं करोगी?
2: नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: नाराज हो?
2: नहीं, बस उदास हूँ, ये सोचकर कि मेरे अपने ही मम्मी पापा, मेरा अपना ही भाई मुझ पर विश्वास नहीं करते।
0: अरे ऐसा क्यों सोचती हो?
2: सोचना पड़ेगा ना भाभी, मेरे अपने ही मुझ पर विश्वास नहीं करते। भाभी, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? सिर्फ एक नाटक में पार्टिसिपेट ही तो किया है।
0: नहीं प्राची, तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए तुम्हारी चिंता करते हैं।
2: नहीं नहीं भाभी, भैया और पापा मुझे समझते ही नहीं, और मम्मी उनका तो साथ देती है मजे से। मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करती हूँ भाभी, ये तो आप जानती हैं। जानती हैं ना मैंने कभी खराब नंबर स्कोर किया क्या? मगर पढ़ने के अलावा भी कुछ इच्छाएं होती हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है भाभी। हमें लगता है कि हम जिंदा हैं, कुछ हैं, मगर ये लोग मुझे समझते ही नहीं।
0: प्राची ऐसा नहीं है।
2: ऐसा ही है भाभी, ये भी कोई जीना है? बताइए, गुलामों की तरह? इससे तो काश मैं होती ही नहीं। मम्मी पापा तो बस अपने बेटे के साथ ही खुश हैं। वो मुझे लाए क्यों भाभी? मुझे मर जाना चाहिए।
3: प्राची पागल बच्ची, ये क्या कह रही हो? तुझे किसने कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते? बेटा, माँ बाप की फिक्र को तुम नहीं समझोगे, हमें तुमसे बहुत प्यार है बेटा।
1: अरे मेरी बहना रानी, तू तो सचमुच बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी है। तेरा भैया जो है ना, तुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा बाबा, ले कान पकड़कर सॉरी बोलता हूं, अब तो हंस दे।
0: ले, मैंने भी कान पकड़े, अब हंसते। और सुन, जल्दी से तैयार हो कॉलेज जाने के लिए। रिहर्सल पे नहीं जाना क्या?
2: सच? जाना है, जाना है भाभी, क्यों नहीं, मेरी प्यारी भाभी।
4: प्यारी भाभी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे किंशुक चौहान, सुधीर तेलंग, समता भोरेकर और दुर्गेश नंदनी। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: अमृत को ग्रहण करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: प्यारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पेंतेकोस पर्व के अवसर पर संत पापा का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने 24 मई को पेंतेकोस्त महापर्व का मिस्सा बलिदान वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि पेंतेकोस्त के महोत्सव से पास्का अवधि अपनी पूर्णता को पहुंचती है। मुक्ति विधान की इस घटना को चिन्हित करने के लिए आज का सुसमाचार हमें सप्ताह के प्रथम दिन की ओर ले चलता है, अर्थात उस नए दिन की ओर जब पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को दिखलाई दिए। उन्होंने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। यीशु अपने महिमामय शरीर को व्यक्त करते हैं, विशेषकर अपने घावों को जो क्रूसित होने के चिन्ह थे। दुख भोग की ये निशानियां जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली थे अब परिवर्तित हो गए हैं। जो मर गए थे सदैव के लिए जीवित हैं। संत पापा ने कहा कि यीशु को देखकर शिष्यों को भी नया जीवन प्राप्त होता है। उन्होंने अपने को व्यारी की कोठरी में बंद कर लिया था। वे भयभीत थे, लेकिन यीशु उनके बीच में आते और खड़े हो जाते हैं। पेंतेकोस्त का महोत्सव इस भांति पास्का और यीशु ख्रीस्त के शरीर का पर्व बन जाता है, जो कृपा में हमारे लिए सब कुछ है। पुनर्जीवित की आत्मा शांति की आत्मा है। संत पापा ने कहा, उनके पास का रहस्य में ख्रीस्त ईश्वर और मानवता के मध्य शांति स्थापित करते हैं और पवित्र आत्मा इस शांति को हमारे हृदयों में उड़ेलती और पूरे विश्व में प्रसारित करते हैं। यह शांति क्षमा से उत्पन्न होती है और हमें क्षमा की ओर अग्रसर करती है। यह हमारे लिए स्वयं यीशु से मिले वरदान से शुरू होती है, जिन्हें हमने धोखा दिया, दोषारोपित किए और क्रूस पर चढ़ाया। वे हमें अपने प्रेम से आश्चर्यचकित करते हैं। पुनर्जीवित यीशु हमें स्वयं कहते हैं, यदि तुम किसी के पापों की क्षमा करोगे तो वे अपने पापों से मुक्त किए जाएंगे। इन शब्दों के द्वारा यीशु हमें एक दिव्य कार्य में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि केवल ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। यह अधिकार हमारे लिए एक वैश्विक मेल मिलाप की निशानी स्वरूप दी गई है। ईश्वर अपनी शांति के आत्मा को इतिहास के एक छोर से दूसरे छोर के लिए उड़ेलते हैं, क्योंकि जिन्होंने सबों को मुक्ति दिलाई वे किसी को अलग नहीं करते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा सृष्टि के शुरू से जीवन देने वाले ईश्वर हैं, जो जल पर विचरण करते थे और अब वे सृष्टि को नवीन बनाते हैं। वे विश्व के इतिहास को बदलते हैं। पेंतेकोस्त हमारे लिए सचमुच नए विधान के त्योहार की भांति प्रतीत होता है, ईश्वर और दुनिया के लोगों के बीच का विधान। हम ईश्वर के नए विधान को हमारे हृदयों में अंकित पाते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम के अक्षरों में ख्रीस्त और कलीसिया के शरीर में अंकित है। संत पापा ने कहा, यह विधान शांति का नियम है। हम इसमें प्रेम के दो आयामी आज्ञाओं को पाते हैं, जिसे आत्मा हर हृदय की धड़कन में याद दिलाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, आओ पवित्र आत्मा, क्योंकि वह हमें पहले ही दिया गया है। हम उनकी कामना कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही उनकी प्रतिज्ञा की गई है।
2: लो स्पिरिटो द रिसोर्टो è lo spirito della missione.
1: पुनर्जीवित की आत्मा प्रेरिताई की आत्मा है। इस दूसरे बिंदु पर चिंतन करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसके परिणाम स्वरूप हम ख्रिस्त की प्रेरिताई की ओर आकर्षित होते हैं, वह प्रेरिताई जो हमारे लिए ईश्वर से आती है और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की ओर लौटती है, जो पिता और पुत्र से आती है, जो एक त्रित्वमय ईश्वर में आराधी और महिमान्वित होती है। पवित्र आत्मा ख्रिस्त का जीवित प्रेम है जो हमें पूर्ण बनाता है, हमें प्रेरित करता और प्रेरिताई में हमें पोषित करता है। प्रेरितों में सुसमाचार घोषित करने की शक्ति में वही आत्मा मानवता को मुक्ति के वचनों की शिक्षा देती है। प्रेरितों ने पुनर्जीवित की सांसों को अपने में पाया है, यह घोषणा उनके होठों से निकलती है जिसे हम पेत्रुस की आवाज में और उनके संग होने वालों में पाते हैं। पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु को घोषित करना शुरू करते हैं, जो विश्वास से शुरू होता है। वास्तव में पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य हम में विश्वास लाना है, जिसके द्वारा हम यह घोषित करते हैं कि यीशु ही ईश्वर है। यह विश्वास जीवित और अच्छे कार्यों में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम करुणा के कार्य और गुणों में पाते हैं। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि हम सचमुच में सुसमाचार के सहयोगी हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी घोषणा आशा और खुशी में होती है, क्योंकि हम सभी दुनिया को नवीन बनाते हैं, उनकी ज्योति और नमक बनते हैं। निश्चित रूप से हमारी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन ईश्वर के वचनों के कारण, जो हम पापियों को पवित्र करते, हमारे कोढ़ को शुद्ध करते और उस प्रेरित को परिवर्तित करते जो उन्हें अस्वीकार करता है। इस प्रेरिताई की शुरुआत ईश्वर की सच्चाई और मानव के बारे में घोषित करते हुए होती है, क्योंकि पुनर्जीवित की आत्मा सच्चाई की आत्मा है, जिसके बारे में स्वयं ईश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं और अपने कलिस्य की एकता की मांग करते हैं। यह एकता ईश्वर के प्रेम में आधारित है, जो प्रेम के स्रोत हैं। आत्मा, जिन्होंने नबियों के माध्यम से कहा है, सदैव सत्य में एकता को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे हम में समझ, एकजुटता और जीवन की एक रूपता लाते हैं। भाषाओं के उपहार को हम एक विश्वास के संदर्भ में समझते हैं। सहायक हमें इस समझ में उत्पन्न होने वाले विघन से बचाते हैं। इसके साथ ही विभाजन, दिखावा और उन बातों को दूर करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को धूमिल करती है। इस तरह ईश्वर के द्वारा मिलने वाली सच्चाई सबों के लिए एक मुक्ति का शब्द बनती है। संत पापा ने कहा कि वास्तव में पुनर्जीवित की आत्मा एक बार हमेशा के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि निरंतर होता है, जैसे कि यूखरिस्त जीवित ख्रिस्त की सजीव उपस्थिति है जो हमें सदैव पोषित करते हैं। ठीक उसी भांति पवित्र आत्मा अपनी कृपाओं को बपतिस्मा में हमें प्रदान करते हैं, जो हमें ख्रिस्तीय बनाता है, दृढ़ीकरण में जो हमें साक्षी के रूप में स्थापित करता है, और अभियंजन के द्वारा वे हमें प्रेरित और ईश प्रजा हेतु चरवाहा बनाता है। पवित्र आत्मा सबों को जन सामान्य की भलाई हेतु दिया गया है। यही कारण है कि हम कलिस्य हैं, एक शरीर जो ईश्वर में निवास करते और दुनिया की सेवा करते हैं। आत्मा का धन्यवाद जो हम सबों के लिए सच्ची शांति लाते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, उत्साही हृदय से आइए हम आज पुनर्जीवित यीशु की आत्मा से प्रार्थना करें, जिससे वे हमें युद्ध की बुराई से बचाए, जो शक्ति से नहीं प्रेम की सर्व शक्तिमता से जीती जा सकती है। हम निवेदन करें कि वे मानवता को दुखों से मुक्त करें, जो अकूत शक्ति से नहीं बल्कि अथक उपहार से होता है। हम प्रार्थना करें कि वे हमें यीशु ख्रिस्त के नाम में घोषित मुक्ति के माध्यम पापों के जंजाल से मुक्त करें। यही वह कृपा है जो प्रेरितों में साहस भरता है।
2: Lo infonda anche a noi oggi e sempre per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
1: वह उसी तरह आज और हमेशा कलिस्य की माता मरियम की मध्यस्थता के जरिए हम में भी साहस भरता रहे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 25 मई को वाटिकन के सिनड हॉल में संत पापा लियो 14वें की उपस्थिति में उनके पहले विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास को प्रस्तुत किया गया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने सभा का संचालन किया। कार्डिनल पारोलिन के स्वागत भाषण के बाद वक्ताओं ने मैनिफिका ह्यूमानिटास के विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया। वक्ताओं में धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस, डरहम यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर एन आर रोलैंड्स, एंथ्रोपिक यूएसए के को फाउंडर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्याख्या पर रिसर्च हेड क्रिस्टोफर ओल्लाह, सांता क्लारा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के प्रोफेसर लियोकार्डी लुशुम्बो आईटी, सतत मानव विकास विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी थे। वक्ताओं के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपना संदेश दिया। संत पापा ने अभिवादन कर कहा, मैं इस मीटिंग को आयोजित करने वाले सभी लोगों, अपनी काबिलियत और अनुभव साझा करने वालों और आप सभी का जो यहाँ या ऑनलाइन में है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह आशा की कितनी बड़ी निशानी है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। यह बातचीत इस पल की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाती है, साथ ही यह भरोसा भी कि हम सभी मिलकर अपने समय के बड़े सवालों को समझ सकते हैं और इसलिए इंसानियत का भविष्य भी। संत पापा ने कहा कि इतिहास के खास मौकों पर कलीसिया को सुसमाचार और इंसान की गरिमा की रोशनी में नई चीजों को समझने के लिए बुलाया जाता है। 135 साल पहले संत पापा लियो 13वें ने फैक्ट्री में काम करने वालों की हालत देखी। उनके परिवार उजड़ गए और तेजी से हो रहे औद्योगिक बदलाव से गरीबी के नए रूप पैदा हुए। वे समझ गए थे कि कलीसिया दूर नहीं रह सकती। इंसानी गरिमा को खतरे में डालने वाले एक बड़े मोड़ पर विश्व पत्र रेरुम नोवारुम ने चल रही नई चीजों के बारे में अपनी सुसमाचारी और सामाजिक बात कही। आज हम खुद को ऐसे ही बड़े बदलाव का सामना करते हुए पा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले से ही हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को छू रही है और उन फैसलों पर असर डाल रही है जो इंसानी साथ रहने को आकार देते हैं। यह युद्ध लड़ने के तरीके को भी बहुत ज्यादा बदल रही है। संत पापा लियो 13वें की तरह संत पापा को लगता है कि उन्हें एक और बड़े बदलाव को भरोसे की आंखों से, समझदारी से, रहस्य के लिए खुलेपन से और गरीबों और धरती की चीखों को अपने दिल में गूंजते हुए देखने की जिम्मेदारी दी गई है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया लंबे समय से परमाणु हथियार खत्म करने के लिए काम कर रही है, यह जानते हुए कि हर बड़ी टेक्निकल ताकत लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है और इसलिए इसके साथ सही नैतिक समझ और पब्लिक कंट्रोल भी होना चाहिए। परमाणु हथियार खत्म करना शांति और इंसानी परिवार की गरिमा के लिए एक सेवा है। संत पापा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संत पापा ने कलीसिया और मानव परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा, आइए हम एक दूसरे की बात सुनना सीखें, आज की चुनौतियों का हिम्मत से सामना करें और एक ज्यादा इंसानी और भाईचारे वाला समाज बनाने में सहयोग दें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में यूरोपियन पार्लियामेंट के जनसांख्यिकी पर इंटर ग्रुप का अभिवादन कर कहा, मुझे जनसांख्यिकी पर आपके सम्मेलन के अवसर पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में अलग अलग राजनीतिक राय को दिखाते हुए अपने अपने लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर महादेश के जनसांख्यिकी सवाल पर ध्यान देना निश्चित रूप से सही समय पर है, क्योंकि यह मुद्दा लाखों लोगों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका व्यवहारिक असर होगा जो पुराना महादेश बन रहा है, अब अपने शानदार इतिहास की वजह से नहीं बल्कि अपनी बढ़ती उम्र की वजह से। संत पापा ने कहा कि जनसांख्यिकी डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि ये पिता, माता और बच्चों के बारे में बताते हैं और बच्चे ही भविष्य हैं।
फिर भी भविष्य की बात करना एक अभिन्न और सतत विकास की ओर इशारा करता है, जो पीढ़ियों के बीच एकजुटता के बिना बहुत ज्यादा रुक जाता है। इसके अलावा हाल के दशकों में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के संस्थापकों की क्रिस्तीय प्रेरणा को नकारने से बहुत ज्यादा बांझपन का दौर आया है। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत से लोग जन्म लेने के अधिकार से वंचित हो गए हैं, बल्कि इसलिए भी कि युवाओं को भविष्य का सामना करने के लिए जरूरी चीजें और सांस्कृतिक साधन देने में नाकामयाबी रही है। इसलिए इन सभी मुद्दों पर अकादमिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को मिलकर तुरंत अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने की जरूरत है। जनसांख्यिकी चुनौती यूरोप के मानव विज्ञान, सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिए एक अहम मोड़ है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में बार्सिलोना इक्वेटोरियल सर्कल के प्रतिनिधियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने वाटिकन में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि मसीह में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन को पवित्र आत्मा के कामों के लिए खुला रखने हेतु कहा जाता है, जिसमें ख्रीस्तीय दया करने की लगातार इच्छा रखने वाले मनोभाव हो। यह एक धार्मिक गुण है जिसे हम सभी चीजों से ऊपर ईश्वर और दूसरों को अपने जैसा प्यार करते हैं, और यह ईश्वर के लिए प्यार की वजह है। इसलिए ख्रीस्तीय कोई साधारण परोपकारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक दयालु व्यक्ति है जो निस्वार्थ रूप से प्यार करता है और सक्रिय रूप से दूसरों की पूरी भलाई चाहता है। और रविवार को स्वर्ग की रानी प्रार्थना के बाद संत पापा लियो 14वें ने चीनी कलीसिया द्वारा मनाए गए विश्व प्रार्थना दिवस को याद किया। संत पापा ने बताया कि प्रार्थना का यह दिन ख्रिस्तियों की सहाई का धन्य कुंवारी मरिया के त्यौहार के साथ आता है, जिनकी शंघाई के शेशान के तीर्थालय में पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान दिया जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पेंतेकोस पर्व के अवसर पर संत पापा का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने 24 मई को पेंतेकोस्त महापर्व का मिस्सा बलिदान वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि पेंतेकोस्त के महोत्सव से पास्का अवधि अपनी पूर्णता को पहुंचती है। मुक्ति विधान की इस घटना को चिन्हित करने के लिए आज का सुसमाचार हमें सप्ताह के प्रथम दिन की ओर ले चलता है, अर्थात उस नए दिन की ओर जब पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को दिखलाई दिए। उन्होंने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। यीशु अपने महिमामय शरीर को व्यक्त करते हैं, विशेषकर अपने घावों को जो क्रूसित होने के चिन्ह थे। दुख भोग की ये निशानियां जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली थे अब परिवर्तित हो गए हैं। जो मर गए थे सदैव के लिए जीवित हैं। संत पापा ने कहा कि यीशु को देखकर शिष्यों को भी नया जीवन प्राप्त होता है। उन्होंने अपने को व्यारी की कोठरी में बंद कर लिया था। वे भयभीत थे, लेकिन यीशु उनके बीच में आते और खड़े हो जाते हैं। पेंतेकोस्त का महोत्सव इस भांति पास्का और यीशु ख्रीस्त के शरीर का पर्व बन जाता है, जो कृपा में हमारे लिए सब कुछ है। पुनर्जीवित की आत्मा शांति की आत्मा है। संत पापा ने कहा, उनके पास का रहस्य में ख्रीस्त ईश्वर और मानवता के मध्य शांति स्थापित करते हैं और पवित्र आत्मा इस शांति को हमारे हृदयों में उड़ेलती और पूरे विश्व में प्रसारित करते हैं। यह शांति क्षमा से उत्पन्न होती है और हमें क्षमा की ओर अग्रसर करती है। यह हमारे लिए स्वयं यीशु से मिले वरदान से शुरू होती है, जिन्हें हमने धोखा दिया, दोषारोपित किए और क्रूस पर चढ़ाया। वे हमें अपने प्रेम से आश्चर्यचकित करते हैं। पुनर्जीवित यीशु हमें स्वयं कहते हैं, यदि तुम किसी के पापों की क्षमा करोगे तो वे अपने पापों से मुक्त किए जाएंगे। इन शब्दों के द्वारा यीशु हमें एक दिव्य कार्य में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि केवल ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। यह अधिकार हमारे लिए एक वैश्विक मेल मिलाप की निशानी स्वरूप दी गई है। ईश्वर अपनी शांति के आत्मा को इतिहास के एक छोर से दूसरे छोर के लिए उड़ेलते हैं, क्योंकि जिन्होंने सबों को मुक्ति दिलाई वे किसी को अलग नहीं करते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा सृष्टि के शुरू से जीवन देने वाले ईश्वर हैं, जो जल पर विचरण करते थे और अब वे सृष्टि को नवीन बनाते हैं। वे विश्व के इतिहास को बदलते हैं। पेंतेकोस्त हमारे लिए सचमुच नए विधान के त्योहार की भांति प्रतीत होता है, ईश्वर और दुनिया के लोगों के बीच का विधान। हम ईश्वर के नए विधान को हमारे हृदयों में अंकित पाते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम के अक्षरों में ख्रीस्त और कलीसिया के शरीर में अंकित है। संत पापा ने कहा, यह विधान शांति का नियम है। हम इसमें प्रेम के दो आयामी आज्ञाओं को पाते हैं, जिसे आत्मा हर हृदय की धड़कन में याद दिलाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, आओ पवित्र आत्मा, क्योंकि वह हमें पहले ही दिया गया है। हम उनकी कामना कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही उनकी प्रतिज्ञा की गई है।
2: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
1: पुनर्जीवित की आत्मा प्रेरिताई की आत्मा है। इस दूसरे बिंदु पर चिंतन करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसके परिणाम स्वरूप हम ख्रिस्त की प्रेरिताई की ओर आकर्षित होते हैं, वह प्रेरिताई जो हमारे लिए ईश्वर से आती है और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की ओर लौटती है, जो पिता और पुत्र से आती है, जो एक त्रित्वमय ईश्वर में आराधी और महिमान्वित होती है। पवित्र आत्मा ख्रिस्त का जीवित प्रेम है जो हमें पूर्ण बनाता है, हमें प्रेरित करता और प्रेरिताई में हमें पोषित करता है। प्रेरितों में सुसमाचार घोषित करने की शक्ति में वही आत्मा मानवता को मुक्ति के वचनों की शिक्षा देती है। प्रेरितों ने पुनर्जीवित की सांसों को अपने में पाया है, यह घोषणा उनके होठों से निकलती है, जिसे हम पेत्रुस की आवाज में और उनके संग होने वालों में पाते हैं। पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु को घोषित करना शुरू करते हैं, जो विश्वास से शुरू होता है। वास्तव में पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य हम में विश्वास लाना है, जिसके द्वारा हम यह घोषित करते हैं कि यीशु ही ईश्वर है। यह विश्वास जीवित और अच्छे कार्यों में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम करुणा के कार्य और गुणों में पाते हैं। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि हम सचमुच में सुसमाचार के सहयोगी हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी घोषणा आशा और खुशी में होती है, क्योंकि हम सभी दुनिया को नवीन बनाते हैं, उनकी ज्योति और नमक बनते हैं। निश्चित रूप से हमारी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन ईश्वर के वचनों के कारण, जो हम पापियों को पवित्र करते, हमारे कोढ़ को शुद्ध करते और उस प्रेरित को परिवर्तित करते जो उन्हें अस्वीकार करता है। इस प्रेरिताई की शुरुआत ईश्वर की सच्चाई और मानव के बारे में घोषित करते हुए होती है, क्योंकि पुनर्जीवित की आत्मा सच्चाई की आत्मा है, जिसके बारे में स्वयं ईश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं और अपने कलीसिया की एकता की मांग करते हैं। यह एकता ईश्वर के प्रेम में आधारित है, जो प्रेम के स्रोत हैं। आत्मा, जिन्होंने नबियों के माध्यम से कहा है, सदैव सत्य में एकता को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे हम में समझ, एकजुटता और जीवन की एक रूपता लाते हैं। भाषाओं के उपहार को हम एक विश्वास के संदर्भ में समझते हैं। सहायक हमें इस समझ में उत्पन्न होने वाले विघन से बचाते हैं। इसके साथ ही विभाजन, दिखावा और उन बातों को दूर करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को धूमिल करती है। इस तरह ईश्वर के द्वारा मिलने वाली सच्चाई सबों के लिए एक मुक्ति का शब्द बनती है। संत पापा ने कहा कि वास्तव में पुनर्जीवित की आत्मा एक बार हमेशा के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि निरंतर होता है, जैसे कि यूखरिस्त जीवित ख्रिस्त की सजीव उपस्थिति है, जो हमें सदैव पोषित करते हैं। ठीक उसी भांति पवित्र आत्मा अपनी कृपाओं को बपतिस्मा में हमें प्रदान करते हैं, जो हमें ख्रिस्तीय बनाता है, दृढ़ीकरण में जो हमें साक्षी के रूप में स्थापित करता है, और अभियंजन के द्वारा वे हमें प्रेरित और ईश प्रजा हेतु चरवाहा बनाता है। पवित्र आत्मा सबों को जन सामान्य की भलाई हेतु दिया गया है। यही कारण है कि हम कलीसिया हैं, एक शरीर जो ईश्वर में निवास करते और दुनिया की सेवा करते हैं। आत्मा का धन्यवाद जो हम सबों के लिए सच्ची शांति लाते हैं। संत पापा ने कहा, प्रिय मित्रों, उत्साही हृदय से आइए हम आज पुनर्जीवित यीशु की आत्मा से प्रार्थना करें, जिससे वे हमें युद्ध की बुराई से बचाए, जो शक्ति से नहीं प्रेम की सर्व शक्तिमता से जीती जा सकती है। हम निवेदन करें कि वे मानवता को दुखों से मुक्त करें, जो अकूत शक्ति से नहीं बल्कि अथक उपहार से होता है। हम प्रार्थना करें कि वे हमें यीशु ख्रिस्त के नाम में घोषित मुक्ति के माध्यम पापों के जंजाल से मुक्त करें। यही वह कृपा है जो प्रेरितों में साहस भरता है।
2: Lo infonda anche a noi oggi e sempre per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
1: वह उसी तरह आज और हमेशा कलीसिया की माता मरियम की मध्यस्थता के जरिए हम में भी साहस भरता रहे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार 25 मई को वाटिकन के सिनड हॉल में संत पापा लियो 14वें की उपस्थिति में उनके पहले विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास को प्रस्तुत किया गया। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन ने सभा का संचालन किया। कार्डिनल पारोलिन के स्वागत भाषण के बाद वक्ताओं ने मैनिफिका ह्यूमानिटास के विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया। वक्ताओं में धर्म सिद्धांत के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस, डरहम यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर एन आर रोलैंड्स, एंथ्रोपिक यूएसए के को फाउंडर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्याख्या पर रिसर्च हेड क्रिस्टोफर ओल्लाह, सांता क्लारा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के प्रोफेसर लियोकार्डी लुशुम्बो आईटी, सतत मानव विकास विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी थे। वक्ताओं के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपना संदेश दिया। संत पापा ने अभिवादन कर कहा, मैं इस मीटिंग को आयोजित करने वाले सभी लोगों, अपनी काबिलियत और अनुभव साझा करने वालों और आप सभी का जो यहाँ या ऑनलाइन में है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह आशा की कितनी बड़ी निशानी है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। यह बातचीत इस पल की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाती है, साथ ही यह भरोसा भी कि हम सभी मिलकर अपने समय के बड़े सवालों को समझ सकते हैं और इसलिए इंसानियत का भविष्य भी। संत पापा ने कहा कि इतिहास के खास मौकों पर कलीसिया को सुसमाचार और इंसान की गरिमा की रोशनी में नई चीजों को समझने के लिए बुलाया जाता है। 135 साल पहले संत पापा लियो 13वें ने फैक्ट्री में काम करने वालों की हालत देखी। उनके परिवार उजड़ गए और तेजी से हो रहे औद्योगिक बदलाव से गरीबी के नए रूप पैदा हुए। वे समझ गए थे कि कलीसिया दूर नहीं रह सकती। इंसानी गरिमा को खतरे में डालने वाले एक बड़े मोड़ पर विश्व पत्र रेरुम नोवारुम ने चल रही नई चीजों के बारे में अपनी सुसमाचारी और सामाजिक बात कही। आज हम खुद को ऐसे ही बड़े बदलाव का सामना करते हुए पा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले से ही हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को छू रही है और उन फैसलों पर असर डाल रही है जो इंसानी साथ रहने को आकार देते हैं। यह युद्ध लड़ने के तरीके को भी बहुत ज्यादा बदल रही है। संत पापा लियो 13वें की तरह संत पापा को लगता है कि उन्हें एक और बड़े बदलाव को भरोसे की आंखों से, समझदारी से, रहस्य के लिए खुलेपन से और गरीबों और धरती की चीखों को अपने दिल में गूंजते हुए देखने की जिम्मेदारी दी गई है। संत पापा ने कहा कि कलीसिया लंबे समय से परमाणु हथियार खत्म करने के लिए काम कर रही है, यह जानते हुए कि हर बड़ी टेक्निकल ताकत लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है और इसलिए इसके साथ सही नैतिक समझ और पब्लिक कंट्रोल भी होना चाहिए। परमाणु हथियार खत्म करना शांति और इंसानी परिवार की गरिमा के लिए एक सेवा है। संत पापा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संत पापा ने कलीसिया और मानव परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करते हुए कहा, आइए हम एक दूसरे की बात सुनना सीखें, आज की चुनौतियों का हिम्मत से सामना करें और एक ज्यादा इंसानी और भाईचारे वाला समाज बनाने में सहयोग दें। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में यूरोपियन पार्लियामेंट के जनसांख्यिकी पर इंटर ग्रुप का अभिवादन कर कहा, मुझे जनसांख्यिकी पर आपके सम्मेलन के अवसर पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में अलग अलग राजनीतिक राय को दिखाते हुए अपने अपने लोगों के प्रतिनिधियों के तौर पर महादेश के जनसांख्यिकी सवाल पर ध्यान देना निश्चित रूप से सही समय पर है, क्योंकि यह मुद्दा लाखों लोगों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका व्यवहारिक असर होगा जो पुराना महादेश बन रहा है, अब अपने शानदार इतिहास की वजह से नहीं बल्कि अपनी बढ़ती उम्र की वजह से। संत पापा ने कहा कि जनसांख्यिकी डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि ये पिता, माता और बच्चों के बारे में बताते हैं और बच्चे ही भविष्य हैं।
फिर भी भविष्य की बात करना एक अभिन्न और सतत विकास की ओर इशारा करता है, जो पीढ़ियों के बीच एकजुटता के बिना बहुत ज्यादा रुक जाता है। इसके अलावा हाल के दशकों में हम देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के संस्थापकों की क्रिस्तीय प्रेरणा को नकारने से बहुत ज्यादा बांझपन का दौर आया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत से लोग जन्म लेने के अधिकार से वंचित हो गए हैं, बल्कि इसलिए भी कि युवाओं को भविष्य का सामना करने के लिए जरूरी चीजें और सांस्कृतिक साधन देने में नाकामयाबी रही है। इसलिए इन सभी मुद्दों पर अकादमिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को मिलकर तुरंत अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने की जरूरत है। जनसांख्यिकी चुनौती यूरोप के मानव विज्ञान, सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिए एक अहम मोड़ है। और संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में बार्सिलोना इक्वेटोरियल सर्कल के प्रतिनिधियों का सहृदय स्वागत किया। संत पापा ने वाटिकन में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि मसीह में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन को पवित्र आत्मा के कामों के लिए खुला रखने हेतु कहा जाता है, जिसमें ख्रिस्त या दया करने की लगातार इच्छा रखने वाले मनोभाव हो। यह एक धार्मिक गुण है जिसे हम सभी चीजों से ऊपर ईश्वर और दूसरों को अपने जैसा प्यार करते हैं, और यह ईश्वर के लिए प्यार की वजह है। इसलिए ख्रिस्तीय कोई साधारण परोपकारी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक दयालु व्यक्ति है जो निस्वार्थ रूप से प्यार करता है और सक्रिय रूप से दूसरों की पूरी भलाई चाहता है। और रविवार को स्वर्ग की रानी प्रार्थना के बाद संत पापा लियो 14वें ने चीनी कलीसिया द्वारा मनाए गए विश्व प्रार्थना दिवस को याद किया। संत पापा ने बताया कि प्रार्थना का यह दिन ख्रिस्तियों की सहायक का धन्य कुंवारी मरिया के त्यौहार के साथ आता है, जिनकी शंघाई के शेशान के तीर्थालय में पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान दिया जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।